सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनू कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरों ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत न पावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उदा सुभा नू इन्हें जानिया ही नहीं कि मेरा पति ते उन्हां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारे हो मेरे सतगुरु दे चरणा विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यारा वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दाद पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मलाप हो जाए वो

नाम साचा नाम मेरा आधार, सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है, कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाज पत रखदा है, जेड़े नाम जपदे ने ना उन्हां नूं मेरे साहब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेड़े नाम जपदे ने उन्हां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भात बचावे, उन्हां ते शतर अनेक चलावत कावत उतन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर, कर मने हाथ, उन्हां नूं अपना हाथ दे के बचा लैंदा, राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे, और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे, माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न पखे पड़हारे, अग दे लाटां बगदियां सी इहदे चार छफेरे जीव दे, उर्द मुख महा गुबारे, पुठा मूह थले नूं लत्तां तां नूं, ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रहा सी विचारा, मगर उथे ए जप रहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जो जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री, जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे, ते ध्यान देना है उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहगुरु नू याद करदा सी, उथे अग दे विच गुरमुख प्यारे ए चौवी घंटे वाहगुरु की याद विच जुड़िया सी, ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छड़ाए लिया, इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छड़ाए लिया, बोलो हां उथे।

0: को सतनाम श्री ए गल उन्होंने आखे अलौती का जैसे पया बरेडा बोलो अलौती का जैसे पया बरेडा जिन पिया तिन जानिया जिन पिया तिन जानिया। बाबा कबीर कहिंदा है गर्मी होवे ठंडा पानी होवे ते मिश्री दा बनिया होवे शरबत मिश्री दा अलौती का जैसे पया बरेडा मिश्री दा शरबत होवे एडा सरबलो दा कौला भरिया ते फिर जिन पिया तिन जानिया इहदे जिन्ने पीता है ओनू पता ना फिर मिश्री दा शरबत किन्ना आनंद देई है। इथे भी बाबे फरीद ने जदों उस परम पिता परमेश्वर दी बंदगी दा रस चख लिया ओदी मिठास वेख ली ते हुण कहिंदा नहीं शक्कर खंड नवात गुड़ माख्यो माझा दुध ए सारियां चीजां हे वाहिगुरु बड़ियां मिठियां ने खा के वेखियां ने। हांजी अगे दी
1: सबे वस्तु मिठिया रब ना पूजन तुध
0: बड़ा प्यारा बचनिया साहब जी कहिंदे ने सबे वस्तु मिठिया इथे खिलारो एक बार सारे आखो सबे वस्तु जिको आप कहने ए ते गल ठीक है ए ते गल पर अगे ना पर आ भी ते गल है आ गल जेड़ी ए होर आनंद दी आ। इथे भी मेरे सतगुरु कहिंदे ने इहदे विच कोई शक नहीं कि शक्कर मिठी नहीं इहदे विच कोई शक नहीं कि खंड मिठी नहीं इहदे विच कोई शक नहीं कि किते शहद जेड़ा वा माखियो दा ओह किन्ना मिठा है इहदे विच कोई शक नहीं कि माझा दुध किड्डा प्यारा है। एक बार भाई नंद लाल साहब नू किसे गुरसिख प्यारे ने पुछ लिया कि तेरे सतगुरु गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने जो मुंह दे विचो बोलदे ने उन्हां दा एक एक बचन किन्ना कु मिठा है। आखो सतनाम श्री जरा गज के आखो समा हो चलिया है मेरा गुरु नानक तुहाडियां झोलियां भर के घरां नू भेजे आखो सतनाम श्री जन्मा दे भुखे आयो गुरु नवाज दवे आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तेरा सतगुरु जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब बोलदा वा किन्नी कु मिठास आ ते भाई नंद लाल साहब ने छेती नाल आखिया जिन्नी एक खंड दी बोरी मिठी शक्कर दी बोरी मिठी ते फिर छेती नाल कहिंदा नहीं नहीं मैं गलत कह बैठा मैनू माफ करियो मैं गलत कह बैठा। उन्हें कहा दस फिर किन्ना कु मिठी है उन्हें फिर एक बोरी दो बोरियां करदे करदे कहिंदे ने आ दो जहान लोक ते परलोक शक्कर दे बन जाण लोक ते परलोक शक्कर ही हो जाए ते जिन्नी ओदी मिठास आ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਠਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ ਮਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਹਾਂਜੀ।

सच जुड़ के आखो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अगम अगुच सच साहिब मेरा सच साहिब मेरा सच साहिब मेरा नानक बोले

0: साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनता दे जोग जे जो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दे दर्शन दरबार करके तन हो रहे हो। भाई गुरुदास जी का एक पावन वचन सारे पढ़िए। सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है, सतगुर
1: दर्शन धन है, सतगुर

सारे आखो सारे ही हुण आपां व्यापार करन आया। एक बचन गुरबाणी दे विच मेरे साहब ने बहुत कीमती, वैसे तो एक एक बचन कीमती गुरबाणी सारी हीरिया मोतिया जवाहरां नाल मड़ी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। एक शब्द बड़ा प्यारा मेरे साहब जी ने प्यारा बचन किया है, कहिंदे तां व्यापारी जानिए, बोलो तां व्यापारी। व्यापारी शब्द बड़ा पछाणिया तुहाडा, तां तुसी व्यापार करन ते सारे ही आए हो, हर बंदा घरों व्यापार करन जांदा है, मगर जेड़ा घाटा खा के चल देना मेरे मित्रो गुरसिखो भाईओ, ते उहनू लोकी कहिंदे नहीं इहनू व्यापार करना आया ही नहीं, जेड़ा घाटा खा के चल तां वा गुरमुख प्यारे हो कि कुछ तां व्यापारी जानिए लाहा लै जाओ। लाहा व्यापारी ते तां ही किसे कहना लै भी इहदे प्यो ने दसां रुपया की रास पा के दिती सी, इह दसां दे नाल सौ कमा के लाया, बड़ा वड्डा व्यापारी है, मगर आपां नूं ते गुरमुखो मूल दिता परमेश्वर ने सुवास, आखिया एक एक सुवास दे नाल परमेश्वर की बंदगी करके लाहा खट के आई, मगर इथों कोई गुरमुख रूहां ते लाहा खट के चले गईयां, मगर मेरे वर्गे मनमुख प्यारे जेड़े मनमुख दियां गल्लां मन दियां गल्लां सुनदे रहे, मन पिछे लगे रहे, गुरु की गल ना सुनी, ए ना सुनिया पीओ पौल खंडे धार होए जन्म सोयला, ते मन दियां गल्लां सुनिया के शराब पीला, जेड़े मन दियां गल्लां सुनदे रहे। मेरे साहब कहिंदे चले मूल गवाए मनमुख।

परमेश्वर ने हर दौलत दिती, उस परमेश्वर तो विछड़िया सानू होके क्यों नहीं आउंदे। इत्थे मेरे साहब जी कहिंदे ने बिरहा बिरहा आखिए बिरहा, तू सुल्तान तू ते विछोड़िया पातशाह है, जिन्हां दे हिरदे दे विच विछोड़े रूपी सल नहीं लगदा, जिन्हां दे हिरदे विचों ए आवाजां नहीं आउंदियां, बहुत जन्म विछड़े थे माधो, जिन्हें ए नहीं कहिंदे कर कृपा मिलो राम, ओ कोई बंदे नहीं, ओ ते मरे हुए मुर्दे तुरे फिरदे ने, उन्हां नूं मसाण समझो। मेरे साहब जी कहिंदे ने जित तन बिरहू ना उपजे सो तन जान मसाण, उन्हां नूं मड़ियां जाणो, वसदा घर ना समझो, वसदे घर विच ते गुरमुख प्यारियो जिन्हां मड़ियां दे विच फर्क आ, इन्ना फर्क उन्हां दे जीवन विच वेखो जिन्हां नूं ए पता ही नहीं असीं रब तों विछड़े आ। बोलो रब तों, फिर बोलो रब तों, जिन्हां नूं ए चेता भुल गया कि असीं रब तों विछड़े आ, ओह जिउंदे नहीं, ओह मसाण ने। मेरा सतगुरु कृपा करे 28-29 तरीक वाला दिन विछोड़े खत्म करने वाला दिन है, जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं ढीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। सतगुरु की कृपा का सदका, गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया के मालिक की कृपा का सदका, अकाफी नाम बीबी जगप्रीत कौर जी, बीबी सुरिंदर कौर पाल जी, बीबी प्रीत इंदर कौर जी, ए एक एक सिकरमा वाले प्यो दियां तियां लगदियां ने, भागा वाला प्यो आ जिदियां तियां, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी बहुता एक सानू वहम आ कि जे अमृत छकाता जी मुंडे नहीं लभने, वाह जी वाह, आखो सतनाम श्री, बड़ा साडे सिर दे उत्ते थौड़ा चलदा है प्यारे। अजे ते तुसी मंगणियां ते तुसी वेखणे ने लोकां दे स्टोर, तुसी वेखणियां लोकां दीआं गड्डियां, जदों इह धी बण गई ना गुरु गोबिंद सिंह साहब दी ते फिर वेखियो पुत लभ के दिंदा, हो फिर वेखियो मेरा मालक उसे घर ही खड़ के रिश्ता अपनी धी का करदा, जिदन तो कोई बच्ची अमृत छक लैंदी आ उहदे प्यो दा नाम की हो जांदा है, फिर एक बार आखो गुरु, ते फिर गुरु गोबिंद सिंह वर्गी पवित्र आत्मा ते सियाणा के साहिब दिमाग है, दिमाग साहिब वाला सब तो सियाणा पिता अपनी धी नूं किते खूह च नहीं सुट्टन लगा। ए ना मन विच सोचिया करो जी बच्चियां दा आनंद कार्ज करना किथे, आ सानू भी वड्डे स्टोर तो दो बच्चियां ने अमृत छकना आना सी, अज हौली जी कहिंदे जी अमृत छकना ते जीत करदा सी, साडे मन च एक सोच आ, मैं कहा मैनूं पता जिहड़ी सोच आ, कहिंदे की सोच आ तुसीं दस दिओ, मैं कहा जी इहो ही सोच होगी भी इहनां नूं मंगांगे किथे। प्यारे हो अमृतधारी बच्चियां नूं अमृतधारी बच्चियां दे नाल जदों आनंद कार्ज कर दईए ना ते फिर 100 चों 100% चिंता मां प्यो दी लथ जांदी आ, क्योंकि जवाई शराब नहीं पींदा, जवाई जुआ नहीं खेडदा, जवाई कुकर्म नहीं करदा, उहदे लड लाई आ जिहड़ा भी अमृत छक के गुरु गोबिंद सिंह साहब दा पुत बणिआ है ते भरोसे गुरु गोबिंद सिंह साहब दे च बांह फड़ाई आ। इस करके आ बीबियां कर्मां वालियां भैणां ने, बीबी रणजीत कौर, जरनैल सिंह, सुरिंदर कौर, ए नाम सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया के मालिक की कृपा दे नाल आ गए ने, होर कृपा करे मेरा सतगुरु तुहाडे विच वड्डी गिणती विच अमृत छकण लई आपां तैयार होईए। 29 तरीक नूं हुणे सुणिया वा ना कि जिहड़ा विछड़िया वा ओ मसाण आ जीवन नहीं, ते आओ गुरमुख प्यारिओ आखां जीवां, बोलो आखां, एक बार आख दिओ गज के आखां ते विसरे, आओ विछोड़े दे सल नूं भुलाईए, जुड़ जाइए उहदे नाल, जिउंदे हो जाइए, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत छके गुरु वाले बनीए, सतगुरु दे लड़ लगीए। 29 तरीक सवेरे 7 बजे केसी इशनान करके साहिबां दी हजूरी च आउणा है, ते 7 बजे आओगे नगुरे, ते जदों 10:30-11 बजे निकलोगे जन्म बदल चुकिया होगा, जीवन बदल चुकिया होगा, प्यो मिल चुकिया होगा, मां मिल चुकी होगी, परिवार मिल चुकिया होगा, 5 ककार मिल चुके होंगे, नितनेम मिल चुकिया होगा, जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही, जदों आए सो मंगते बन के अमृत, मगर जदों नितनेम लैके जाओगे पातशाहां दे पातशाह बन के जाओगे, भुलाना चतारनिया असीस देनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

लोभ लभाया मोरी रुण चुन लाया भैने सावण आया। ते पिछे जाके एक बचन मेरे साहब ने बड़ा सुंदर कीता है, कहिंदे एक दिन फिर ओ सुपने विच आ गया, आखो सतनाम श्री आया सुपने विच, ध्यान देना एकाग्रता बख्शो, सुपने च आया, सुपने च सुपने आया, बोलो सुपने आया। ए बड़े दिनां दी कहिंदी सी मैं दर्शन करने दर्शन करने, ओ सुपने च आया, सुपने च आया, ते कुछ छिन दर्शन ददार दे के कोल बह के चले गया। सुपने आया पी गया, जिन्ना चिर नहीं सी वेख्या उन्ना चिर गल होर सी, सुपने विच ही झलक विखा के चले गया। हुण रोंदी आ मैं जल भरिया, रोए अखा च जल त्रप त्रप वगी जांदा है, ते कहिंदी आ हुण करां की, सुपने च ते मिलिया चले गया, हुण आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई, तेरे कोल ना कोई सुना भेज सकदियां ना मैं आ सकदियां, क्योंकि पता नहीं तू रहिंदा कित्थे आ। हुण ते रात दिन किसे वजोग च कहिंदी आ धन सो

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़िया उन्हें मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तखत मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जे ते चौर हो सकदा है होर किसे ते चौर नहीं हो सकदा 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखां गुरमुख प्यारियां ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकदा है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकदा है गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उन्हें चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उन्हें मंजी दे थले रखे जांदिया दास ने पहलो मारी फोटो पवा के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थान दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन

हे साहब जी ए जड़ी रोज अरदास होंदी आखो सतनाम श्री हे साहब जड़ी रोज अरदास होंदी आ खालसे दी भावे अकाल तख्त ते अरदास होवे भावे हजूर साहब अरदास होवे भावे तख्त श्री पटना साहब अरदास होवे भावे केसगढ़ साहब अरदास होवे दुनिया दे हर कोने दे गुरुद्वारे विच हे मेरे सतगुरु सुख मंगी जांदी आ खालसे दी जहां जहां खालसा जी तहां तहां रशिया रियायत रोज अरदास कीती जांदी आ ते मेरे सतगुरु जिन्हां दी रोज अरदास हुंदी आ उन्हां दी कलास दे विच मैनू भी रला ला मैनू भी खालसा बना ला अरदास करो मेरिया भैणा बच्चियां वीर गुरसिख फिर एक एक दा नाम दस के अरदास ना करानी पवे रोज सुते सिद्ध पटीशन हो जाए रोज सुते सिद्ध अरदास गुरु दे घर विच रोज एप्लीकेशन तुहाडी लगे जे तुसी खालसे बन जो ते इस करके परसों ए भागां वाला दिन आउणा है कोई मेरी भैण कोई बच्चा मन दे प्रभाव थले आण के गुरु दा पल्ला ना छड़ दिओ दो तरह दा जीवन हुंदा है गुरु मर्जी ते मन मर्जी गुरु मर्जी ते मन मर्जी ए मन मर्जी होगी जिहड़ा आखोगे अजे साल खलोना है ए गुरु मर्जी होगी कि जिहड़ा कहिंदा हर जपदिआं ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़ीए मत जापे साह आवे कहिंदा आवे राम ए गुरु दी मर्जी होगी कि मेरे गुरु दा उपदेश होगा पियो

0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु
1: नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक
0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
1: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
0: सिद्ध कहिंदे ने असी सारी मंडली ने तुहानू धन कहा, हरिद्वार दे पांड्या ने तुहानू धन कहा, जगन्नाथपुरी आलिया तुहानू धन कहा, मुल्तान दे पीर तेरे चरणा ते डिग पे, मक्के मदीने वाले गढ़ बगदाद वाले तेरे चरणा ते डिग पे, आखिर राज की ध्यान दे हो जा, आखिर राज की शक्ति की। ते धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने सिद्धो खोजत खोजत अमृत पिया, बोलो खोजत खोजत लभदियां लभदियां ओ चीज लभ गई जिहदे नाल फिर सारे मसले हल हो जांदे ने। खोजत खोजत अमृत पिया, अमृत पीता मैं जिहदे करके जय जयकारां हो गईयां, जिहदे करके जय जयकार हो गई, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, मन तन विच परमेश्वर वस गया। ते फिर सिद्धा ने अगला सवाल किया, ए जिहड़ा अमृत आ बड़ा कीमती आ? साहिब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां बहुत कीमती आ। आखिया फिर दिता की कीमत की दिती दे? ते बड़े प्यारे बचन गुरु नानक साहब ने जो उथे बोले, बड़े प्यार दे बचन ने, कहिंदे खिमा गई मन सतगुर दिया। अमृत नहीं उतरा मिलता जिना चिर मन नहीं अपने गुरु दे अगे अर्पण करना पैंदा, जिना चिर मन नहीं जीव आत्मा वेच देंदा। आ लोकी बहुते कहिंदे मेरा मन नहीं करदा, मेरा मन नहीं मन्या, मेरे मन दी अजे परपक्ता नहीं होई। गुरमुख प्यारे हो, ए ते रोगी होए नू, एनू कोड़े होए नू, एनू विगड़े होए नू, मन बेचै

पारक बारक मुख मांगे सो देना, बारक मुख मांगे सो। ए बन गया मेरा पुत, ते आज तो हुण जो मेरा पुत मुंह चो मंगे इनू देना है। ओ आर्डर करके मुड़िया, उन्हें कह दिता, गया कोल गल नाल फिर मत्था चुमया, गल नाल लाया ते आख्या मैं कह दिता है दाता देन वाले नू, सचेत होके बैठो, मैं कह दिता है। आख के गए ना कि बारक मुख मांगे सो देना, उन्हें आख्या पिता कृपाल आ गया है कीनी, बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें ते ए गल कह के मुड़िया, ते पिछे बालक ने आख्या मेरी ते हुण भुख ही कोई नहीं रह गई, मैं मंगा की। नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, हुण मुक गए ट्रैक्टर मंगने, मुक गईयां गड्डियां मंगणियां, मुक गईयां दुनिया दीयां दौलतां, हुण ते नानक बारक दर्श प्रभ चाहे। बोलो नानक बारक, हुण ते इहनूं पता लग गया असली दात की आ। देख जीवां गुर तेरा दर्शन दे।

अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जोगाद सच खैपी सच नानक खुशी पी सच।

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जोगादि सच खैति सच नानक खुशी भी सच

गुरु प्रभु तुम्हारी किस रखो कृपाता जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जियो जित

मन इस वक्त दौड़ रहा है, अपने मन नूं इस केंद्र बिंदु दे उत्ते लिया के इकट्ठा करो कि मेरे कोल मौत ने एक दिन आना है ते मैनू मरना पैना है, मैनू ये शरीर छड़ना पैना है। ये मन विच विचार करो कि मैनू मौत आनी है ते इस केंद्र बिंदु दे उत्ते अपना ध्यान टिकाओ केवल एक मिनट लई, ते फिर वो एक मिनट का समा नोट करके वेखियो तुहाडे मन दे अंदर ना कोई दुई, ना कोई द्वैत, ना कोई निंदा, ना कोई चुगली, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई मैल, कुछ भी नजर नहीं आएगा। वो एक मिनट जो मौत नूं चेते कर रहे हो गहराई विच जाके तुहाडे मन दे अंदर बड़ी पवित्रता दी लहर बनदी हुई नजर पैगी। जद अंदरों प्राणा तो सोचोगे ना मरना पैना है, अंदर कंब जाएगा, जे मरना ही पैना है तो फिर मैं अपना समा बर्बाद क्यों कर रहा, फिर मैं तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण विच जाके ते जन्म नूं सफल करन दा यतन करा, अपने आप नूं सवारन दा यतन करा। क्यों मैं कूड़े करकट दे ढेर बन बन के अपने सिर दे उत्ते पंडा रखी जा रहा, फिर मन इत्थे टिकेगा। कहन लगे जिंद बूटी मरन वर लै जासी पर नाए, अपन हथी जोड़ के जोड़ मैंने तोरना, अपने हथा दे नाल तेनू तोरना पैना। हथा दे नाल बच्चिया नू जन्म देने, हथा दे नाल बजुर्ग वारा नू तोरना पैंदा। इन्हां हथा दे अंदर कईयां दा जन्म होया, कईयां नू खड़ाया, लाड़ प्यार दिता, कुछड़ गोदी चुकदे रहे, ते इन्हां हथा दे नाल कईयां दा मरदे वकत इशनान पान करवाया, कईयां दी अर्थी नू मोटा दिता, कईयां दे चिखा नूं लांबू लाए इन्हां हत्थां दे नाल। खिमा मंग लवां और एक बेनती भी करदा चलां, भगत फरीद साहब जी दे सलोकां दे अंदर तकरीबन बहुता ख्याल मौत दा हुंदा है, और जिन्हों मौत चेते विच आ जाए ना उन्हों परमात्मा भी चेते विच अवश्य आ जांदा है। मैं किधरे कथा कर रहा सां सरी दे अंदर, सरी दे अंदर एक स्टेज है दशमेश दरबार, एक गुरुद्वारा साहिब है दशमेश दरबार, संगत बहुत हुंदी है, सरी दी सब तो वड्डी स्टेज ओही है। सूही राग दे अंदर कथा चल रही सी लड़ीवार, ते कथा चल रही सी भगतां दी बाणी दी, ते हुण ओ भगतां दी बाणी दे अंदर हर शब्द दे अंदर ही मौत दा जिक्र आउंदा है, हर शब्द दे अंदर ही मौत दा जिक्र। जद तीन क दिन मैनू बीत गए, तकरीबन नौ दस शब्द ने जिन्हां दे अंदर लड़ीवार मौत दा ही सिलसिला है, मौत दा ही जिक्र है। जद तीन क दिन बीत गए ते मैं कथा कर रहा सा, दोपहर दे वक्त संगत काफी होंदी है, एक प्रेमी आन के मेरे सामने ना पर्ची लिख के रख गया, ते पर्ची ते लिखिया ज्ञानी जी घरों आई दा शांति लैण वास्ते, तुसे तीन दिन हो गए ने साडे कन्ना दे अंदर मरना पैना है, मरना पैना है, मौत आउणी है, सानू डरा धमका के घर नूं भेज दिंदे हो, इहदा नां कथा है। मैं कहा सज्जना तू सही ढंग दे नाल कथा सुनी नहीं है, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पढ़, एक एक पंक्ति विचों सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी याद करवा रहे ने परमात्मा नूं, और बहुत शब्दां दे अंदर याद करवा रहे ने मौत नूं, एक शब्द नहीं अनेकां शब्द, सैकड़े शब्द ने जो तैनूं तेरा अंतला पल चेते करवा रहे ने। इन्ना खौफ क्यों, इन्ना डर क्यों? कथा ध्यान दे नाल सुनो, उन्हों अपने अंदर जान दिओ, विचारो कि यह जो गल सुनी जा रही है इहदे अंदर कोई सच भी है जां सारी झूठ बयानी है। खैर अपने विषय दे नाल जुड़ो, भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने कि अपन हथी जोड़ कै कै गल लगै ताए, अपने हथां दे नाल तोरना पैगा, कै गल किहदे गल ताए मैंने अगां वध के गलवकड़ी विच लै के रोएगा, अपने हथां दे नाल अपने आप नूं तोर के। बड़े साडे हथां दे अंदर जन्मे ने, बड़े चले जाने ने, रोज कोई ना कोई आउंदा नजर आ रहा है, कोई ना कोई जांदा नजर आ रहा है। महात्मा बुद्ध दे पास एक वारी ना एक माता आई, ते माता पंज कु साल दा अपना बच्चा उन्हूं मोढे दे नाल लाया, ते मोढे दे नाल ला के चुक के महात्मा बुद्ध दे पास आ गए। कहन लगे महात्मा बुद्ध मैं सुनिया है कि जिहड़ा सच्चा साधु है वह किसी का दुख वेख के बर्दाश्त नहीं करता, ते आ वेख मैं जहरे रूप दे अंदर अपना दुख तेरे कोल लेके आई हां, जहरे रूप दे अंदर अपना दुख। महात्मा पुछदा है कि दुख माता की? बच्चे नूं कंधे दे नाल लाया सी, आख्या मेरी इकलौती संतान, ये भी चलाना कर गया, एको एक मेरा पुत्र, ना कोई होर मेरी धी, ना कोई पुत्र।

समय सिमरन तनानक राम दमोदर माधवे जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी तिस राखु हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखु हो लाज मुरार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जीओ फरीदा जे जाना तिल थोड़े

एक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निगी गोद आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों मन बिरतियां एकागर करके बहन अते सुनन दी कृपालता करियो। आप सरवण करदे आ रहे हो रोज सवेर दे वकत भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों लड़ीवार विचार लड़ीवार कथा। अज जो श्लोक आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, पहला श्लोक है फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरे, कि जे मैं जानदा हुंदा कि तिल थोड़े ने ते जल्दी जल्दी बुक भर भर के दूसरे पासे रखन दे नाल सुटन दे नाल इन्होंने जल्दी खत्म हो जाना है, ते मैं बड़ा सोच विचार के संभल संभल के कदम पुटदा बुक भरदा ताकि मेरे भांडे विचों तिल मुक दे ना। हकीकत यह है फरीद जी जिधर इशारा कर रहे ने कि मनुख नू जदों अपने सवासां दी कीमत समझ विच आउंदी है कि मेरे सवास अमोलक ने, ते जिहड़े सवास इह अज तों पहलां लै चुका है जिन्ने सवास गुजार चुका है उन्हां पिछलियां बीतियां होयां सवासां दे अंदर इह वेखदा है कि मैं कमाया की ते गवाया की, ते नजर इह आउंदा है कि गवाया सब कुछ है ते कमाया कुछ भी नहीं। समझ ये आउंदी है कि सवास गवाई गवाए ने, इन्हां सवासां दे नाल मैं कोई चंगा वणज वपार कीता हुंदा, रब जी दे गुणां दा संग्रह कीता हुंदा, वाहिगुरु मंत्र दा जाप कीता हुंदा, ये कुछ ते नजर आ नहीं रहा, ते सवास सारे गवाए हुए गुम हुए राख दे ढेर दे अंदर पाए हुए नजर पै रहे। पिछले बीते समय दे उत्ते तौबा कर रहे ने, उपदेश ते सानू ही दे रहे ना भगत फरीद साहब, आप ते उस महासागर परमात्मा दे अंदर मिलके अपेद हो ही चुके ने, साडे लई उपदेश है पिछले बीते हुए समय दे अंदर जो गुनाह हुए जो सवास संभाल ना पाया उन्हां वास्ते पश्चाताप कर, उन्हां गुनाहां दे उत्ते तौबा कर, ते अगों वास्ते अपने मार्ग नूं सवारन दा आप यतन कर, अगों वास्ते रहिंदे सवासां दी संभाल करन दा यतन कर। जिस तरह धन तुहाडी जेब दे अंदर है तुहाडा अपना ही कमाया होया धन तुहाडे पास है, हुण मर्जी भी तुहाडी है कि उस धन दे नाल बाजार विचों जाके तुसी अति कौड़ी चीज खरीद के लैयो, ते तुहाडी मर्जी भावे अति मिठा पदार्थ बाजार दे अंदर जाके खरीद के लैयो। एको ही मार्केट दे अंदर जान लेवा पदार्थ मिलदे ने ते जान देवा पदार्थ मिलदे ने, जो तंदुरुस्ती देण वाले ने पदार्थ ओ चीजां वस्तां मिल जांदियां ने बाजार विचों, ते जो रोकी बनाउन वालियां ने चीजां वस्तुआं ओ भी मिल जांदियां ने बाजार विचों। शहद खरीद के लियाउणा है, मिश्री खरीद के लियाउणी है, कोई होर मिठास खरीद के लियाउणी है, तुहाडी मर्जी है, पैसा तुहाडा है, सोच तुहाडी है। अगर कौड़ा तुम्मा खरीद के लियाउणा है ते तां वी सोच तुहाडी है, पैसा वी तुहाडा है, मर्जी तुहाडी है, क्योंकि सवासां दा सरमाया तुहानू खुदावंद करीम परमात्मा ने दे दिता है। इस धन दे नाल खर्च करके तुसी वैस्या द्वारे जा सकदे हो, पब्बां क्लबां दे अंदर धन नूं खर्च करके जा सकदे हो, इसी धन दे नाल जुवारी बन सकदे हो, इसी धन दे नाल अयाशी बदमाशी दे अड्डे कायम कर सकदे हो धन दे नाल, ते इसे ही धन दे नाल आपां
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਣੇ। ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਧਨ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਧਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਧਨ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵਰਤੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਵਰਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੈ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਜਾਚਕ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੰਗੋ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੋ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਰ ਖੜਕਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ, ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜੇ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ।

इच्छा रहया दूर। देख फरीता जेथिया सकर होई बिस, साई बाजों अपने वेदन कहिए किस।

दया सेकित फेर चित हरिदा कुकेंदिया जागेंदिया मती दिंदिया नित जो शैतान वंजाया से कित फेर चित वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाप पवित्र ते निगी गोता आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों आप रोज सवेर दे समय लड़ीवार कथा सरवण करदे आ रहे हो। सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों अज जो आप संगत दे सन्मुख सलोक पढ़ के सुनाए गए उन्हां विचों पहला सलोक भगत फरीद साहब जी दी रचना द्वारा उचरिया होया। फरीदा काली जिनी ना रावया तौली रावे कोई। काला ते तौला, तौले दा मतलब चिट्टा, इन्हां दो रंगा दा जिक्र भगत फरीद साहब जी पहली पंक्ति दे अंदर ही कर रहे ने। वालां दा रंग काला होना यह जवानी दी निशानी है ते वालां दा रंग तौला हो जाना चिट्टा हो जाना यह बुढ़ापे दी निशानी है। बुनियादां भरिया ही ना होन, बुनियादां बुनाईया ही ना होन, बगैर बुनियादां दे अगर इमारत नूं खड़ा करना चाहिए तो इमारत खड़ी नहीं होएगी। अगर किसी ने जमीन दे अंदर किसी सब्जी दा फल दा फसल दा बीज बीजिया ही नहीं तो बगैर बीज बीजन तो वह फल की तमन्ना करे तो उहदी तमन्ना करनी ही गलत है। बगैर दवारा तो कोई छत खड़ी करनी चाहे तो दवारा तो बगैर छत खड़ी नहीं होंदी। बगैर बीज बीजन तो कोई फल दी लालसा रखे तमन्ना रखे उहदी चोली दे अंदर फल नहीं पैंदा। बगैर शुभ कर्म करन दे अगर कोई ये चाहे कि मेरे मन नूं शांति मिल जाए सुकून मिल जाए सहज बन जाए घर दे अंदर सुख बन जाए वो भी नहीं बनता। सुख नूं प्राप्त करना एक वड्डी ते महान दात है। शांति हृदय दे अंदर बन जाना एक उपलब्धि एक मंजिल दी प्राप्ति है। पर खिमा चाहांगा ये वेखो कि उस सुख दी प्राप्ति शांति दी प्राप्ति वास्ते मैं कर्म की कीता है। अगर कर्म ही नहीं है ते मंजिल ते बहुत वड्डी दी मंग कर रहे हैं वो मंजिल मिले किवें। शांति बड़ी वड्डी दी मंग कर रहे हैं वो शांति बने किवें। अगर बुनियादा ही नहीं है बीज ही नहीं है तो फिर शांति जीवन दे अंदर बने किवें। भगत जी कहन लगे काली, काली दा मतलब काले रंग दे अंदर ते काले रंग दा मतलब जवानी दे पैर दे अंदर क्योंकि जवानी दी निशानी है वालां दा रंग काला स्याह काला। कहन लगे जिस मनुख ने जवानी नूं बर्बाद कीता है उहदा जीवन सारे दा सारा तकरीबन बर्बाद हो ही जांदा है क्योंकि जे आप ध्यान दे के वेखोगे ते जवानी दे अंदर तकरीबन तकरीबन गुनाह हुंदे नजर पै रहे ने ते जवानी दे अंदर ही दूसरे पासे गुण हुंदे नजर पै रहे ने। ठीक है दुनिया दे अंदर कुछ बच्चे भी गुनाहगारी हुंदे ने कुछ बुजुर्ग भी गुनाहगारी हुंदे ने कुछ बच्चे भी बड़े महान हुंदे ने कुछ बुजुर्ग भी बड़े महान हुंदे ने पर सारी एवरेज कढो अगर आंकड़े कढ के सामने लियाओ ते जवानी ही ज्यादा गुनाहां वाले ते जवानी ही ज्यादी गुणा वाले। कतलो कारत दे अड्डे बने
अयाशी बदमाशी दे टिकाने बने, वैसिया दुबारे बने, जुए दे अड्डे कैम होए, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਵੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਏਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਜੂਏ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ

0: मिठिया रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस परम विच ते रहिंदा है के बारों मेरे सिर दे उते बजी हुई पग मैली ना होवे। हकीकत है कि मनुख नू जितनी खबर बार दी है उना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बार दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए सब की तमन्ना है, मन साफ होना चाहिए किसी विरले विरले की लोचा है, सब की तमन्ना ये नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े घर बार मोटर कार हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहीदी है। इत्थे सब नू पता है, पर जिथे दीन दयाल निरंकार नू वसदा रसदा वेखना चाहुंदे आ मन साफ चाहीदा है। ये किसे विरले विरले नू पता है, सब नू नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बार मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बारों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है, तो अपनी मैल नूं वेख के बंदा आप ही बेचैन हो जांदा है कि इतनी सारी मैल। अपनी मैल नूं वेख के अपने आप तो आप ही नफरत कर बैठदा है, इतनी सारी मैल ते ओ वी मेरे अंदर। मैं ते समझदा सा नहीं है पर बहुत ज्यादी है, बहुत ज्यादी है। तो खैर ईसाई जगत दे अंदर ईसाई जगत दे बानी हजरत ईशा जी उन्होंने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करदे सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनता है तो वो ए है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने अवतारी तेरे प्रिय पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिदा है, साफ चाहिदा है। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनूं कुछ ज्ञान है ते बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना दी खोजबीन करदा रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करदा रहा। ओ मैल चाहे तन दे उत्ते या फिर तन दे उत्ते पए होए कपड़िया दे उत्ते उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा। मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़ियां दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, एक गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है ओ बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है, जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोतै उतरसके है। ये बाहर दी मैल है, अगर हथ पैर भर जांदे ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोतै पानी दे नाल तो लो उतरस खेहे लगी हुई मैल उतर जाएगी चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गोन लईए उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कहन लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाणगे साफ हो जाणगे। पर किसी ने प्रश्न किया साहब जी अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए मैल अंदर चली जाए, ते अंदर दी मैल नूं बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिये मत पापां कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना उह पाप आया अपराध नहीं आया, इस जगह दे उत्ते इस तरह नहीं है कि अपराध लफज आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपन वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, भावे दोवे गुना दोवे दोष दोवे तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच क्रोध निंदा चुगली ईर्षा तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने उहदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आण के जिहड़े बुरे कर्म करने असी शुरू कर देने आ उहदा नाम अपराध है। अपराध नूं डर हुंदा है हथ घड़ी दा कानून दा समाज दा, पर पाप नूं ते वी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसे दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहवांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानता, बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानता तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है या सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने ओह साडे बाहर मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने, साडा बहना उठना चंगा है तुरना फिरना चंगा है बोल बाणी चंगी है, लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ मनमुख हाँ, यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदे चला, डॉक्टर इकबाल ते इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसे होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रहे, पत्नी दे सामने हो रहे, धी दे सामने हो रहे, समाज दे सामने हो रहे ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रहे। गिरकट अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर विच जाना पिया है, उत्थे कोई सोख समाचार है, इहदे अंदर भावें गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनूं आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर भावे जैलसी है, अंदर भावे ईर्षा है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्हां नूं वधाई देण दी इहनूं बड़ी चंगी तरह आदत है, कुशल है। यह जानता है कि खुशी का मखौटा कदों पाउणा है ते कमी का मखौटा कदों पाउणा है। खैरे मेरा विशा नहीं सी, अंदर जो बुराई है उहदा नाम पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जाती है उहदा नाम अपराध। बस एक नुकता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध तां ही बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह दी फसल दा बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने मुढ़ तो, उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी ये मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने, उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो, फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो, फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहनियां नूं आप कट देंदे हो, दो टहनियां कट दे हो, दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहनी नूं कट रहे हो दूजी नवीं जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रहेगे ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करदे ने, कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सर्फ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नामे कै रंग, धुप जाएगी, मायूसी दी लोड़ नहीं। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तो बाद ओह मैल जाणी है, उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन। ओह धुपै नामे कै रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण सोच करे दिनस अर रात। इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना, सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारों सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारों तो बिल्कुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नूं की असर पएगा? ठीक है लोगों के सामने इनी को तेरी इमेज बन जाएगी, बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ये बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जाता, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता का मुल ता ही पैंदा है जे मन सुचा हो। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता का ते बारी सुच का कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आन के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, यह मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे की वाधू सोचे मैं ओदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड के अंदर लेके चली जाती ओदी गल कर रहा। हुणे ही आप श्री आसा जी की वार का कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक के अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड़ी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उते केंद ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे ता सच पाई है। हुण एक बेनती मैं होर करा, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे भी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने भी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, इह पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाई है, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, भी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो एदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही परम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाईए, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां, तां सुच बनदी है अंदर दी, सच पाईए जे सच दे गुणा नूं अपने हृदय विच वसा लवें। ते असीं की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाईए। असीं एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाईए। एक जगह ते मैनूं गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रहा, क्योंकि फरीद साहब जी का हुक्म अज इस तरह का आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली हो जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होवे, मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, मैं सिर भी मिट्टी ने खा जाना है, मैं ते सिर ते बत्ती पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जाता है, इहदा ध्यान किसे नूं है, तन मैला ना होवे इहदा ध्यान सानूं सारियां नूं है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रसना दे बचन ने। हुण इन्हां बचनां नूं सुनन तो बाद जे बंदे दे मन दा परम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अग्ञानता दे हनेरे विच ही खड़ा है, फिर ते इनो ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे होवे मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावै ते नौंदा फिरे 68 तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नूं बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे नाही राम एयाना, लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना। लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे, कहन लगे दे नाल फर्क नहीं पैना। क्यों नहीं पैना? कहन लगे ना ही राम एयाना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनू अंदरों जानदा नहीं, ਉਹ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਅਗਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਓਏ ਮੈਨੇ ਉਹ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ। ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮੰਜ ਸਕਾਉਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਮਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਮੰਜਸ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਉਣ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਤਨੀ ਛੂਆ ਛੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁਚਤਾ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ रोक दिता गया कि तू तंबाकू सेवन नहीं करना। कारण सी उहदा, अज हर शराब की बोतल दे उते लिखिया होया मिलदा है सेहत लई हानिकारक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने गुरु नानक साहब जी की पाक बाणी ने सानू हुक्म ला के रोक दिता तू इस पासे नहीं जाना। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ खुले ने। अच थां थां दे उते मीडिया दे अंदर रौला है कि एड्स की बीमारी का इलाज केवल परहेज है, पर धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने पा हुक्म रोक दिता कि बस संघ एक ही शरीर का चाहिए, बहुतिया शरीर का नहीं चाहिए, ताकि तू तन करके भी तंदुरुस्त रहे, तन करके भी रोगी ना बने, तन करके तंदुरुस्त रहे, इस तरह के नियम बनाए, मन करके तंदुरुस्त रहे, गुरबाणी तेरी चोली विच पाई, गुरबाणी दे नाल जुड़। पर साडा सारा जोर बाहरी सोच दे उत्ते लग जांदा है, अंदर सोच बनदी है नहीं बनदी है, इस पासे साडा ध्यान जांदा ही नहीं। ते मैं ते होर भी कई बारी हैरान हुंदा, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल जाना है ते इशनान करके जाओ, पर दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, दूजे दे कोल जाना है ते कोई परवाह नहीं, भावे कोई तीन दिन का नाता है नहीं नाता, ओदे कोल रौल लाउन जाना है ते कोई बंदिश नहीं है, एक दे कोल रौल लाउन जाना है ते इशनान करना लाजमी है। कम से कम मर्यादा ते एक बना लो, या ते कहो करके जाना है, या कहो सवेर दा कीता काफी है, या कहो हर रौल ते करना काफी, एक मर्यादा ते एक घर दी कायम कर लो। एक घर दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं, एक गुरुद्वारे दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं है। खिमा जावांगा तो खैर गल मैं मैल दी कर रहा सां। तन दी मैल नालों मन दी मैल हजार गुणा बदतर है, मन दी मैल हजार गुणा बुरी है तन दी मैल नाल। मन दी मैल अति बुरी है, निरंकार दे घर दे अंदर प्रवेश करन ही नहीं देंदी। अगर किसी दे तन दे उत्ते पाए हुए कपड़े कालख दे नाल भरे होन, मिट्टी कटे दे नाल चिकड़ दे नाल भरे होन, या उहदा तन चिकड़ दे नाल भरिया होवे, कि आप उहनू कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के मिलदे हो? अगला चिकड़ दे विचों निकल के आया होवे तो की कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के उहनू आप मिलदे हो? मिलना चाहुंदे हो पर ये कहिंदे हो कि पहला सजना इशनान पान कर, अपने तन दे कपड़े उतार, तन दे कपड़े बदल, तन दे कपड़े साफ कर, तन साफ कर, ते तां उहनू आपां अपनी गलवकड़ी विच लै के मान देने उस तो पहला ने। जे तन मैला है ते असी अपनी गलवकड़ी विच नहीं लैंदे, ऐलानिया कह देना चाहुंना जे मन मैला है ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गलवकड़ी दे विच भी नहीं आ पाओगे। गुरु ने वेखना तेरा मन उज्जल है या नहीं है, पवित्र है या नहीं है। तन मैले वाले नूं असी कोल नहीं बहन देंदे, मन मैले वाले नूं सतगुरु कोल किवें बिठाउणगे? सतगुरु दी गड़वकड़ी दा निग किवें पा सकेगा जिहदा मन ही मैला है? चलो मैं होर एक बेनती उदाहरण वजों करदा चलां। दुनिया दे अंदर मां वास्ते सब तो अमोलक दात, अमोलक चीज मां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाला बच्चा है। बच्चा बालपन दी उम्र दे अंदर अपनी अनजानता दे कारण अपने ही मल मूत्र दे नाल अपने तन दे कपड़े नूं भर लवे ते मां दीआं अखां वेख लैण कि बच्चे दे तन दे कपड़े लबरेज हो गए ने, भर गए ने बच्चे दे मैले दे नाल। तो हुण मां लिबड़े तिबड़े बच्चे नूं इकदम चुक के अपनी छाती दा निक नहीं देंदे। पहला मां की काम करदी है, बच्चे नूं चुकदी है, उहनूं इशनान पान करवाउंदी है, तन दे कपड़े ला देंदी है, बदल देंदी है, दूजे कपड़े पवा के उहनूं साफ करके ते तां मां अपनी छाती दा निक देंदी है, उस तों पहला नहीं। हुण मन भी इस तरह ही, अगर मन भी लिबड़िया तिबड़िया है, मन मैला कुचैला है, ते गुरु दी छाती दा निक किवें पाओगे? मन पवित्र करोगे ते गुरु चरणा दे अंदर बहन दी जगह मिलेगी, वरना नहीं। तनासरी राग दे अंदर श्री गुरु नानक देव पातशाह दा एक बचन आंदा है, कहन लगे दाग दोष लगे हुए कपड़िया दे उते दाग, ते मन दे उते दाग का दे लगदे ने मैलियां कर्मां दे, मन दे उते दाग का दे लगदे ने मैलियां सोचां दे। हजूर गुरु नानक साहब जी कहिंदे ने दाग दोष मुंह चलिया लाए तेरे मुंह दे उत्ते बड़े दाग लगे ने, दोष ने, अपराध ने, पाप ने, तेरा मुंह कालख दे नाल भरिया है, कलंकित है। कह लगे दरगह बैसन नाही जाए, जाए दा अर्थ है जगह। कह लगे सच दे घर दे अंदर बहन वास्ते तेनू जगह नहीं मिलेगी। दरगह बैसन, बैसन मैंने बहना, नाही जाए, जगह नहीं मिलेगी। उथे आना है ते पूरा पवित्र होके आ, अधूरा पन नहीं चाहिदा। जितना समा मनुखी मन दे अंदर पूरी पवित्रता नहीं आ जाती, उतना समा खुदा दे अंदर लीन नहीं हो सकता, दूर ही रहिंदा। इहनू वार वार चांस मिलता रहेगा, जन्म मिलता रहेगा। जितना समा अपने आप नूं पवित्र नहीं कर लै, उन्ना समा परमात्मा दे चरणां विच बहन दा समा नहीं मिलेगा। एक बेनती मैं इस संबंध दे अंदर होर भी करदा चलां। साढ़े तन दे उत्ते जिहड़े पाए हुए कपड़े ने, वह कपड़े मैले हो जाण, शरीर विचों निकलण वाली मैल या बाहरी गर्दो गुबार दे कारण तन दे कपड़े मैले होए, वह कपड़े असीं ला के पत्नी दे अगे सुट देने, धो के साफ करके मैनू दे। अगर पत्नी नहीं है, मां दे अगे, भैण दे अगे, धी दे अगे या किसी दूसरे दे अगे कपड़े रख देने, कपड़े मेरे ने, धोण दा काम तू कर। बाहरी दुनिया दे अंदर यह दस्तूर चलदा है, कपड़े किसे दे ने, उन्हां नूं साफ कोई दूसरा कर रहा है, धो कोई दूसरा रहा है। धर्म की दुनिया के अंदर मन के कपड़े नूं धोण वास्ते यह दस्तूर भी नहीं है। यह मन का कपड़ा मैला किया है, तुसी आप इनू धोना भी पैना है, तुहानू अपने आप में। यह मन का कपड़ा इस तरह का नहीं है कि इनू लाओ ते ला के किसी लौंडरी ते ले जाओ कि उत्थों मन धोवा के वापस ले आइए। कोई लौंडरी इस तरह की नहीं है। मन का कपड़ा इस तरह भी नहीं है कि इनू लाओ ते ला के मां भैन धी दे अगे रख दो कि कपड़े तू साफ कर। मन तुहाडा है, मैला तुसी कीता है, धोना भी तुहानू आप ही पएगा। हाँ, एक गल जरूर है, तुसी अपने मन नू धोण वास्ते यतन करो थोड़ा, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहाडे ते रहमत करनगे बहुत ज्यादा। पर जे हिम्मत करोगे मन नू साफ करन दी, तां ते जे हिम्मत ही ना करो ते फिर गुरु की रहमत तो भी वांझे रह जावांगे। आप ही इनू धोना पैना है, आप ही असी इनू मैला कीता है। कुछ नुकते ने जो मैं तुहाडे चरणा विच बयान करन दा यतन कर रहा, इन्हां नू हिरदे दे अंदर वसाउण दा जरूर यतन करियो। जदों कोई अपने घर दा कूड़ा करकट इकट्ठा करके, झाड़ू पोचा करके, घर दे अंदरों कागज मिट्टी कट्टा इकट्ठा करके लफाफे विच पा के वो तुहाडे घर दे दरवाजे दे अगे रख जाण, तो तुसी बर्दाश्त कर लोगे? दूसरे दे घर दा कूड़ा करकट पाया है उन्हें बैग दे अंदर, वो बैग सुट के चला गया एन तुहाडे दरवाजे दे अगे जिथों तुसी अंदर आना है या बाहर निकलना है, बिल्कुल मेन डोर दे सामने रख के, बर्दाश्त नहीं होएगा। गरीब तो गरीब भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मन की सफाई करनी है ते इस तरह का ध्यान रखना पेगा। दूसरा कोई मेरे मन के घर के अंदर कूड़ा करकट सुटन का यतन तो नहीं कर रहा, कोई दूसरा मेरे कन्ना के अंदर चुगली सुटन का यतन कर रहा है, तो परहेज करो भी कूड़ा तेरा है, तू मेरे मन में सुटन का यतन क्यों कर रहा है? अगर कोई तुहाडे कन्ना विच निंदा दे बोल, काम दे बोल, बुराई दे परे बोल पा रहा है, ते गुरेज करो, परहेज करो, उन्हों कहो भी अपना कूड़ा करकट, अपनी बुराई अपने पास रख, तू अपने घर का कूड़ा मेरिया कन्ना दे राही मेरे मन दे घर विच सुटन दा यतन क्यों कर रहा है? कूड़ा दूजे दा हुंदा है, सानू मन दी समझ नहीं, असी दूसरे का कूड़ा चोली फैला के प्रवान करी जाने। जे कोई दूसरा चुगली करता है दूजे की, असी हां विच हां मिलाने, कोई निंदा करता है हां विच हां मिलाने, ते बड़ा खुश होके दूजे की निंदा ते चुगली दे अंदर हिस्सा लेने, बड़ा खुश होके निम्मा निम्मा हसदे हुए भी नजर पैने दूसरे की चुगली सुन के, दूसरे की निंदा सुन के। पर ये नहीं जानते कि जो सुन रहे हो, जो सुना रहे हो, इन्हें ही तुहाडे जीवन की रुकावट बन जाना है। इन्हें जीवन के अंदर दीवार का काम करना, इन्हें तुहानू पार लगन नहीं देना। प्यारे इन्हां नुक्तियां नू अपने जीवन के अंदर अपनाओ अगर जीवन नू रोशन करना चाहते हो। गुरबाणी का फरमान है, मन मैले सब किस मैला, तन तोते मन हच्छा ना होए। कहन लगे तेरा मन मैला है ते एवें समझ लै कि सारा कुछ ही मैला है, तन नू धोण दे नाल तेरा मन हच्छा नहीं होना। कबीर साहब बैठे सन खड्डी दे उत्ते, कपड़े बुन रहे सन। कपड़े बुनना कबीर साहब जी दी करेत है, कबीर साहब जी दा कम है, धंधा है। कपड़े बुन रहे ने खड्डी दे उत्ते बह के, निकलिया एक बिलकुल सुच दे नाल जुड़िया होया, बाहरी सुच दे नाल पखंड दे नाल जुड़िया होया कोलों ब्राह्मण। ब्राह्मण ने वेख्या कि कबीर साहब खड्डी बुन रहे ने और खड्डी दे नेड़े बह के उन्होंने लंगर छकना शुरू कर दिता। अचानक उस समय किधरे चलते चलते माता लोई जी आ गए प्रशादा लेके घरों, ते कबीर साहब उत्थे ही हाथ धो के खड्डी दे कोल ही बह के प्रशादा छकना शुरू कर देंदे। उस पखंडी ब्राह्मण ने तनज परे दो बोल गए कबीर साहब जी नूं मुखातब हो गए, क्योंकि सारा बनारस तकरीबन तकरीबन पखंडी ब्राह्मणा दे नाल भरिया सी। अगर बनारस दे अंदर संती होंदे ते गुरबाणी दे अंदर ये बोल कदी ना आउंदे कि गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग, कोय हर के संत ना आखियां बनारस के ठग। बनारस दे ठग मशहूर ने, बनारस दे संत मशहूर नहीं है, ठग मशहूर ने। निकले कोलों तनज परे बोलां दे अंदर गल कह दिती, कहन लगा जिस बंदे नूं भोजन छकन दा नहीं पता कि कित्थे बह के खाना है, उहदा जीवन किन्ना को सुच्चा होएगा, उहदा जीवन किन्ना को पवित्र होएगा। कबीर साहब जी आखर बोल पए, कहन लगे माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। आमह झूठे जाहे भी झूठे, झूठे मरे अभागे। कहन लगे मां झूठी पिता झूठा, उन्हां दी औलाद उन्हां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाली ओह भी झूठी। आ रहे ने झूठ दे नाल परे, जा रहे ने झूठ दे नाल परे, आउण जाण दा इह सिलसिला मुक्या ही नहीं। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, ठाओ मैंने जगह। पंडित जी दस दे ते जाओ के सुची जगह केड़ी। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बह सो भोजन खाओ, जिथे बह के मैं भोजन खावा ये दसदा ते जा के जगह केड़ी है। मन नू पवित्र करन दे नाल निरंकार दी हजूरी दे अंदर प्रवेश की मिल जांदी है। तन नू पवित्र रखो जरूर, पर सारा जोर तन दे उत्ते ना दियो, सारा जोर मन दे उत्ते दियो। मन दी सफाई वल ध्यान दियो, ताकि मन करके हजूर दी हजूरी दे अंदर प्रवान हो जाइए। पंडित निहाल सिंह जी बहुत आला कविता नू जन्म देंदे ने, उन्होंने मैल दे संबंध विच एक बोल लिखिया है। वो कहिंदे ने एक मनुख व्याया गया, उहदे घरवाली दा नां सी चंद्रमुखी। पुराने समय दे अंदर शरीर दे लक्षणां नूं वेख के, सुहापन नूं वेख के, नक्शो निगार नूं वेख के नाम दे दिया करदे सन चंद्रमुखी। नाम सी चंद्रमुखी, ते पति चंद्रमुखी दी शोभा करदा, थकदा नहीं सी। चंद्रमुखी दे चेहरे नूं वेख वेख के आनंद पाउंदा सी, ते इह गल कहिंदा सी, चंद्रमुखी मैनूं लगदा है तेरे वर्गा सुंदर मनुख दुनिया दे अंदर दूसरा नहीं है। पंडित निहाल सिंह जी लिखदे ने कि एक दिन चंद्रमुखी दे नक विचों मैल निकले। उन्हें हाथ दे नाल नक दी मैल नूं साफ कीता, पर थोड़ी जी मैल उहदे चेहरे दे उत्ते, उहदी गल दे उत्ते लग गई, थोड़ी जी मैल। उहदे पति ने गलानी कीती, नफरत कीती उस मैल नूं वेख के। ते मैरज करदा रहिंदा अक्सर ही कि नफरत हुंदी मैल तों है। जे दूजे दी मैल दिस रही है दूजे तों नफरत है, जे अपनी मैल नजर आ जाए ते अपने तों वी नफरत है। दूजे तो नफरत कर दे, जे कोई तुहानू पुछे भी क्यों, आपां अक्सर कह दिंदे आ बड़ा बुरा मनुख है, भी की बुरा है, उहदे हथ पैर बुरे ने, चेहन चक्कर बुरे ने, की बुरा है। आपां कह दिंदे आ नहीं, उहदा सुभाअ चंगा नहीं है, सुभाअ बड़ा बुरा है, इहदी सोच बुरी, इहदा वेखना बुरा, इहदा चलना बुरा, इहदा खाना बुरा, इहदा मानसिक मंडल बुरा। दूसरे की बुराई तो नफरत है, ते जे ओही बुराई अपने विच दिस पे तो की अपने नाल प्यार करोगे। पर शर्त यह है कि जे दिस जाए, पर दिसदी दूसरे की बुराई है, अपनी बुराई बंदे नूं दिसदी नहीं है। अपने वेखदा है जदों भी गुण वेखदा है, दूसरे की जदों भी वेखदा है बुराई वेखदा है, औगण वेखदा है। तो पति कहन लगा चंद्रमुखी पहला चेहरे की मैल साफ कर, तेरा चेहरा वेखण दे योग नहीं है। पति देव रोज कहिंदे सी मेरे नालो सुंदर कोई दूजा नहीं, अज की होया? पति कहन लगा चेहरे नूं जाके साफ कर, तेरे चेहरे दे उत्ते नक विचों निकली हुई मैल जम गई है। तो निहाल सिंह जी लिखदे ने, हे मल मूत कसूत सबै पुन और सलेखन बांजन भारी, नाक की मैल जबै निकसै कर नाहे संभार सो पोच उतारी, कर दे नाल मैल कर मैंने हाथ कर दे नाल मैल साफ कीती है पर किधरे चेहरे दे उत्ते लगी रह गई है। आख्या कर नाहे संभार सो पोच उतारी, तो मुख चंद्र कहे जेह को तब नाहे निहार सके वो नारी। ते अखीर दे उते पंडित जी ने अपने वालों संदेश दिता, कहन लगे पिख रंचक, पिख मैंने वेख के, रंचक मैंने थोड़ी जी, पिख रंचक मैल गिलान करे सठ, सठ मैंने मूर्ख, सठ जानत नाही अहे के सारी, हे मूर्ख मनुख जानदा नहीं है कि तेरे अंदर इस तरह की मैल ही मैल भरी पई, तेरे नौ द्वारियां विचों मैल ही बाहर आ रही है। जितने नौ द्वारियां दे नाल ध्यान जोड़ के वेखो अंदर दी मैल बाहर आ रही है, पर वो शरीर कमैल है। मन दी मैल निरंकार नूं परवान नहीं, ते तन दी मैल सानू परवान नहीं। असीं चाहुंदे आ तन साफ होवे, निरंकार चाहुंदे ने मन साफ होवे। तो अज दे इस महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी दा प्रमाण, कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा, मैं इस भरम विच रहा कि पग मैली ना होवे, मन मैला होवे कोई डर नहीं, पग मैली ना होवे, मत मैली होए जाए, बड़ा ध्यान रखे तन दे पाए हुए कपड़े मैले ना होन, पगड़ी मैली ना होवे, गैला रूह ना जाने के सिर भी मिट्टी खाए, नहीं जानदा कि जिस मैल तो मिट्टी तो परहेज कर रहा है, एक दिन मिट्टी तेरे उत्ते आ जानी, मिट्टी पई है तोलवी कोई ना हो सी मित, मिट्टी तेरे उत्ते आ जाएगी, सिर नूं भी निकल जाएगी, खा जाएगी। तो मैल तन दी ओ भी बुरी, मैल मन दी ओ भी बुरी, तन भी साफ चाहिदा है, पर तन मैला भी होवे कम चल जांदा है, पर मन मैला होवे ते कम नहीं चलदा। तन साफ किवें रखना है, पूरी कायनात नूं समझ आ गई है। मन साफ किवें रखना है, ए समझ केवल विरलियां विरलियां नूं, हजारां विचों विरलियां नूं मिली। कोई विरला धर्म दे मार्ग दे उत्ते चलण वाला मन दा परहेजगार है, तन दे परहेजगार सारे ही आ। रस्ते दे अंदर मिट्टी घटा होवे, चिक्कड़ होवे, पानी होवे, असीं सिद्धा तुर के नहीं निकलदे, रस्ता वला के निकल जाने आ, क्यों? सामने ते चिक्कड़ है, सामने चिक्कड़ होवे, चुगली होवे, निंदा होवे, ईर्षा होवे, तवैच होवे, असीं मन नूं उहदे विचों गुजारदे आ, नहीं परहेज करदे कि इत्थों निकलन करके मन भी मैला होएगा। कबीर साहब ताई ते चेतावनी देंदे ने कि साकत संग ना कीजिए, दूरों जाइए पाप, मन नूं लैके इधर जाएगा साकत दे संग दे अंदर, ते मन तेरा अवच्छ मैला होएगा। भगत फरीद साहब जी दे इस बचन नूं आधार बना के कुछ कहन दा निमाणा यतन कीता गया।
1: फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांजा दुध, सबे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद, फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावन मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहन गे दुख, रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो हरिदास।

रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी आप पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा सरवण करदे आ रहे हो। सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों तीन सलोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। पहला सलोक फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध। सबे वस्तु मिठिया रब न पूजन तुद। गिनती विच भगत फरीद जी कुछ मिठिया चीजा नू लै रहे ने। नंबर एक दे उते शक्कर, नंबर दो दे उते खंड, नंबर तीन दे उते निवात। ते निवात कहिंदे ने मिसरी नू। मैं अर्ज कीती सी कि सब तो पहला मिसरी मिश्र देश दे अंदर बननी शुरू हुई। इनू ताई मिसरी कहा जाता है क्योंकि मिश्र दे अंदर ये सब तो पहला बननी शुरू हुई कुजे दी मिसरी। भगत जी कहन लगे शक्कर खंड मिश्री गुड़ माखियो। माखियो का मतलब शहद, मांझा मझां का दुध। कह लगे सारिया वस्तुआं मिठिया ने पर जे रबी रस दे मुकाबले दे उते इना विचो कोई भी उदाहरण बनाईए ते ओ रब जी दी तोहीन होएगी। जे ये कहिए कि रब जी दे नाल जुड़न तो बाद जेड़ा रस मिलदा है मिठास मिलदी है ओ शक्कर वर्गी है तां रबी गुणा दी रब जी दे नाम दी तोहीन है। जे कहिए ओ खंड ते मिश्री वर्गी है ते तां वी खंड ते मिश्री दी मिठास परमात्मा दी मिठास नालों बहुत थले है परमात्मा दी तोहीन होएगी। अगा कहन लगे ना उदी मिठास दे बराबर माखियो ना मझ दा दुध कुछ भी उदी उदाहरण नहीं है। ओ अपनी उदाहरण केवल आप है। अगर दुनिया दे अंदर आप कोही नूर हीरे दी उदाहरण लियानी चाहो ऐस जगत दुनिया दे अंदर जिथे आपां वस रहे हां ते कोही नूर हीरे दी एग्जाम्पल दुनिया विच दूसरी नहीं। उहदे वर्गा हीरा ही दूजा नहीं ते उहदे उदाहरण कौन कोई बने। कोही नूर अपनी उदाहरण आप है। इस तों अगे होर चलो

गहरी है समुंदर वर्गी, चीज गहरी है सागर वर्गे। ते जे सागर नू बयान करना होवे ते उदाहरण की दोगे? सागर अपनी उदाहरण आप है, हिमालया पर्वत अपनी उदाहरण आप है, आकाश अपनी उदाहरण आप है, इहदे वर्गा कोई दूजा नहीं। परमात्मा अपनी उदाहरण आप है, परमात्मा वर्गा कोई दूजा नहीं। कित्थों उदाहरण लब के लियाईए कि परमात्मा इन्ना उच्चा है? अगर ये कह दिए कि परमात्मा हिमालया पर्वत वर्गा उच्चा है तो फिर हिमालया पर्वत की एक सीमा है। हिमालया पर्वत ते आए दिन कोई ना कोई विज्ञानी दे कदम टिके होंदे ने हिमालया पर्वत दे उते। हिमालया पर्वत नू कोई चल के सर कर लैंदा है तो फिर ते परमात्मा भी बहुत छोटा होया अगर एक हिमालया पर्वत वर्गा है। जे ये गल कहो कि परमात्मा सागर वांग डूंगा है तो सागर दी गहराई सीमा दे अंदर है। मैं अक्सर एक बेनती करया करदा कि जो मापन विच, जो तोलन विच ते जो गिनन विच आ रहे उनू बेअंत कहण दी लोड़ नहीं है। जो मापिया जा सकदा है बेअंत नहीं है। ओ इस तरह नहीं कि उहदा पारावार नहीं। जो गिनिया जा सकता है वह बहुत वड्डा नहीं, गिनती दे अंदर है। जो मिनिया तोलिया जा सकता है वह भी बहुत वड्डा नहीं, मिनती दे अंदर, पैमाने दे अंदर, तोल दे अंदर है। परमात्मा ना गिनती विच है, ना मिनती विच है, माप तोल विच नहीं, ते ना परमात्मा होर किसी पैमाने दे अंदर ही कैद हुंदा है। परमात्मा गिनती मिनती तोल पैमानिया तो बाहर है। तो हुण ए कहना परमात्मा समुंदर वर्गा डूंगा है, परमात्मा दी तोहीन होएगी। परमात्मा पहाड़ वर्गा उच्चा है, परमात्मा दी तोहीन होएगी। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने एक बचन जरूर फरमाया है, वो कहन लगे एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए। परमात्मा तेरी उदाहरण नहीं है। हां कोई तेरे नाल जुड़दा जुड़दा चलदा चलदा तेरे वर्गी ऊंचाई नू पा लवे ते कह सकने आ कि ओ तेरी रमज नू तेरे विस्तार नू जान पावे, पर जिन्हां ने जानिया है ओही ते कह रहे ने कि तू बेअंत है। गुरु साहिबान ही ते कह रहे ने कि तू बेअंत है, भगत जानी ते कह रहे ने कि तू बेअंत है। तो मैरिज कर रहे सा परमात्मा दे उत्ते दुनियावी कोई भी उदाहरण लागू हुंदी नहीं। परमात्मा दे बराबर किस चीज नू खड़ी करोगे? कहोगे परमात्मा समुंदर वर्गा डूंगा है ते सब तो ज्यादा डूंगा अटलांटिक ओशन है, और वह किन्ना है? 39,000 फुट डूंगा, इस तो वध डूंगा नहीं। हिंद महासागर 39,000 फुट डूंगा है, इस तो ज्यादा नहीं। तो की फिर परमात्मा 39,000 फुट दे उत्ते जाके खत्म हो जाता है? परमात्मा इत्थे मुक जाता है? उदाहरण जदों भी दिती जांदी है उदों उहदी दिती जांदी है जिहड़ा अगे खड़ा होवे। जे ते बुराई दी उदाहरण देनी है ते बुरा मनुख जिहनूं कह रहे हां उहदे नालों अगे खड़ा होवे, उदाहरण उहदी। ते जे चंगियाई दी उदाहरण देनी है ते चंगेपण दे अंदर भी जिहड़ा अगे खड़ा होवे, उदाहरण उहदी। आप अपने बच्चिआं नूं जदों तालीम दी विद्या दी उदाहरण देंदे हो ते कदी इस तरह उदाहरण दिती है कि बेटा साडे पड़ोसियां दा बच्चा या साडे रिश्तेदारां विचों फलाना बच्चा लगातार एक क्लास दे अंदर 5 साल ला के तां अगे सरकिया है, तां अगे होया, 5 वार इको क्लास दे अंदर फेल होया। उहदी उदाहरण तुसी बनाओगे? बल्कि उहदी उदाहरण बनाओगे जो 1 साल दे अंदर 2-2 क्लासां करदा रहा है, जो बड़ी जल्दी डिग्री नूं पाउण वास्ते पहुंच बना चुका है, उदाहरण ओदी बनाओगे। पढ़ाई दे अंदर उदाहरण ओदी जो चलदा चलदा बहुत जल्दी मुकाम दे उत्ते पहुंचिया ते पूरी तरह कामयाब होया। अगर आप अपने बच्चियां नूं कारोबार दी उदाहरण दिओ, एक दुकानदार एक व्यापारी अपने बच्चियां नूं कारोबार दी उदाहरण दवे तो की कदी ओदी उदाहरण बनाई है? जेड़ा बंदा अपनियां कमजोरियां दे कारण कारोबार विचो फेल हो चुका है, ओदी उदाहरण बनाओगे जो कारोबार नूं आरंभ करदा है 0 तो, पर ओह चांदी दिनां दे अंदर कारोबार दा हीरो बन जांदा है, कारोबार दे अंदर बहुत बुलंदियां नूं छू लैंदा है,
आप उदाहरणों नु बनाओगे। बेटा,

तन सुहागन नाओ सवरे पेय कंत की कंत अगम्य था नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह सोहरे पेय कंत की कंत अगम्य था नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निकी गोता आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनों आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचों। अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए पहला श्लोक है अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रहन बिहाए। पहला एक बेनती नु समझन दे यतन करो कि इस दुनिया दे अंदर औरत दा जामा ते भावे मर्द दा जामा है। जदों चर्चा परमात्मा दी चले उदों परमात्मा दे सामने आपां सारे नार दे रूप विच आ ते परमात्मा पति दे रूप विच है। इस जग में है पुरख एक है होर सगली नार सबाए। इत्थे जामे दा फर्क नहीं कि जामा औरत दा है जामा मर्द दा है। उपदेश ही कली औरत नूं है मर्द नूं उपदेश नहीं उपदेश सांझा है। गल परमात्मा दी चल रही है इस करके भगत फरीद साहब परमात्मा नूं कंत कहिंदे ने अपने आप नूं नार कहिंदे ने। वैसे भी तुहाडे ज्ञात लई मैं बेनती करदा चला गुरबाणी नूं ध्यान दे के पढ़ो। गुरबाणी दे अंदर किधरे परमात्मा नूं मां किधरे पिता किधरे पुत्र किधरे भाई किधरे बंधु कह के बुलाया गया सत्कारिया गया। किधरे किधरे गुरबाणी दे अंदर परमात्मा नूं मालक ते स्वामी कहा गया गोपाल कहा गया। गुरबाणी दे अंदर परमात्मा दे संबंध विच कबीर साहब इस तरह भी कहिंदे ने कहे कबीर गुलाम घर का जी आए भावे मार। परमात्मा मैं तेरे दर दा गोला गुलाम हां और तेरी गिरफ्त विच हां हुण मर्जी तेरी है तू मैनू जिंदा रखे ता भला है तू मैनू मार देवे मेरा तावी कोई इतराज नहीं। उथे अपने आप नू गोला ते परमात्मा नू मालक मन रहे ने। सूफी संता ने तकरीबन तकरीबन परमात्मा नू महबूब जानिया है और अपने आप नू महबूबा दी जगह दे उते मन्या है। तकरीबन सूफी संता दा किरदार इस तरह दा है परमात्मा नू महबूब मनदे ने अपने आप नू महबूबा मनदे ने। तो जद परमात्मा महबूब है तो फिर लफज भी उस तरह दे वरतों विच लियाउणे पैणगे। भगत फरीद साहब जी ने लफज बयान किते अज न सुती कंत स्यों कंत मैने परमात्मा कंत दा आखरी अर्थ वैसे हुंदा है पति ते साडा पति कौन है परमात्मा। अज मैं पति परमात्मा दा मलाप नहीं जानिया पति परमात्मा दे नेड़े नहीं हो सके। जीव स्त्री परमात्मा दे संबंध विच कह रही है अज मैं परमात्मा दी नेड़ता नूं मन करके नहीं पा सके। ते परमात्मा दे नेड़े तन ते हुंदा नहीं हुंदा ते मन परमात्मा दे मलाप दा आनंद मन नूं मिलना है। मन ही परमात्मा पति दी शेज दे उत्ते जाएगा तन दा जाना ही बड़ा मुश्किल। तन किवें लैके जाओगे तन ने ते मर भी जाना है मुक भी जाना है
तन बिरध भी हो जाता है, तन सड़ भी जाता है, तन पसम भी हो जाता। जाना मन ने परमात्मा दे दर दे उते। अच मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़ पाया। जोड़दा समय रोज रोज सुबह तो शाम तक परमात्मा दे नाल अल्लाह दे नाल अपने मन नू। अज किसे कारण दे करके मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़िया। मैं परमात्मा दे नाल सौ नहीं सकिया। सौन दा मतलब है मिलना। अंग मुड़े मुड़े जाए मेरे सारे शरीर दे अंदर बेचैनी है, मन दे अंदर बेचैनी है। ते बेचैनी किथे बनदी है? मन दे अंदर। मिलाप दा रस किथे बनदा है? मन दे अंदर। मिलन वाला कौन है? मन। अज मेरे मन दे अंदर बेचैनी है। बेचैनी किस गल दी है? क्योंकि जो परमात्मा रोज रोज मिलदा सी उनू मिलन करके कोई ना कोई नवा रस जीवन दे अंदर रोज बनदा सी, नवा रस रोज पैदा हुंदा सी। अज परमात्मा दा मिलाप भी नहीं हो सकिया। किसे कारण मैं परमात्मा नू आराध नहीं सकिया। अज वो रस भी नहीं बनिया। ते रस नहीं बनिया ते मन दे अंदर चिड़चिड़ापन ते क्रोध दा जन्म होया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੜਚਿੜੇਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਸ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਰੋਏਗਾ, ਮਨ ਕਲਪੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਸ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦੀ? ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਏ ਰਹਿਣ ਮੈਨੇ ਰਾਤ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜੋ, ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਣ ਤੁਮੇ ਆਏ ਪਾਹੁਣ ਮੈਨੇ ਪਰਾਉਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਣ ਤੁਮੇ ਆਏ। ਤੋ ਅਰਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰਸ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ, ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ, ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
मां भी ना रह, पिता भी ना रह, पत्नी भी ना रह, पति भी ना रह, तिया पुत्र भी किनारा कर जन, ते पदार्था वालों भी बिलकुल नगन हो जाए, मुफलस हो जाए, अति गरीब बन जाए, पदार्थ भी ना रह, तन दौलत भी ना रह, शरीर की तंदुरुस्ती भी ना रह। इस तरह के मनुख का जीवन बेरसा होंदा है, बेरसा, क्योंकि जीवन चलना है किसी रस के आसरे ते। रस मिलदा है सानू काम क्रोध लोह मोह हंकार विचों, रस मिलदा है सानू परिवार विचों, रस मिलदा है पदार्थ विचों। हुण परिवार भी किनारा करके चला गया, पदार्थ भी कोल नहीं रहे, ते शरीर दी तंदुरुस्ती भी नहीं रही, तो कहना पेगा ना जीवन बेरस है। इस तरह का मनुख हार के कदी कदी एक फैसला ले लैंदा है कि जद मेरे कोल हुण रस ही नहीं, तो हुण मैं जीवन नूं रख के करना भी की है, जीवन दी लीला नूं खत्म कर दई है। तो इस तरह का मनुख फैसला लेंदा है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे हम, मरकर बिना चैन आया तो किधर जाएंगे।

कंत अगम यथा नानक सो सोहागनी जो पावे बेपरवाह नानक सो सोहागनी जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनों, चल रही लड़ीवार कथा विचार आप रोज रोज सरवण करते आ रहे हो। भगत फरीद साहब जी की मुबारक बाणी विचों अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, सहुरे टोई ना लहै पेये ना ही थाओ, दो थावां दा जिक्र भगत फरीद साहब ने बाणी विच फरमाया, एक सौरा घर ते दूसरा पेका घर। कहन लगे जिसनू सहुरे घर दे अंदर भी टोई ना मिले, टोई दा मतलब सहारा ना मिले, रहन वास्ते जगह ना मिले, पेके घर दे अंदर भी रहन वास्ते जगह ना मिले, वो जीव आत्मा आखर जाए किधर? क्योंकि बसियां जन्म लेंदियां ने, उम्र दा कुछ हिस्सा गुजार देंदियां ने पेके घर दे अंदर, ते बाकी दा उम्र दा हिस्सा गुजारिया जांदा है सौरे घर दे अंदर। जिदे पास पेका घर भी नहीं सौरा घर भी नहीं तो फिर आखर वो जाए किथे? कहन लगे सहुरे टोई ना लहै। हुण इस रमज नूं थोड़ा जिहा समझण दा यतन करियो। सहुरा घर बयान कीता है परमात्मा दे घर नूं, पेका घर बयान कीता है ऐस लोक नूं। साडी आत्मा नूं इह लोक भी छड्डना पिया, पर लोक दे अंदर परमात्मा पति दा घर मिलिया ना, ते फिर ओह आत्मा जाएगी किथे? ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਤਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲ, ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਤਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਤਨ ਕੋਲੋਂ ਤਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਔਰ ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਰਸ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੂਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
मन करदा सी अमृत वेले उठा मैं उठ पिया, मन करदा सी सुता रवा ना उठा मैं नहीं उठा। मन दी गल तुसी वार वार करदे रहिंदे हो, मन दी चर्चा वार वार रसना दे उते आउंदी रहिंदी है। तन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं, मन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं। मन महसूस करन दा विशा है ते तन इना दो अखां दे नाल वेखन दा विशा है। नंबर तीन दे उते बचदी है आत्मा। आत्मा ना ते वेखन दा विशा है, इना दो नेत्रां दे नाल आत्मा दिसदी नहीं है। आत्मा ना मन वांग महसूस करन दा विशा है, आत्मा है केवल विश्वास दा विशा। हुण इह महसूस भी नहीं हुंदी, इना दो अखां दे नाल दिसदी भी नहीं। इह कारण है अजकल पढ़े लिखे लोकां दे जगत अंदर आत्मा तो विश्वास उठदा जा रहा है, ते जिन्नी म्यार दे अंदर जिन्नी तादाद दे अंदर आत्मा तो विश्वास हटदा जा रहा है, उन्नी ही म्यार दे अंदर नाल लगदा परमात्मा तो विश्वास हटदा जा रहा है, क्योंकि आत्मा परमात्मा दी अंश है। कबीर साहब कह रहे ने, कहो कबीर हम राम की अंश, ते जे राम दी अंश उत्ते विश्वास नहीं ते राम उत्ते विश्वास कित्थों आएगा। जे परमात्मा तो विछड़ी हुई एक बूंद उत्ते विश्वास नहीं ते परमात्मा ते विश्वास किवें बनेगा। अगर सागर दी लहर दे उत्ते भरोसा नहीं ते सागर दे उत्ते भरोसा किवें बनेगा, किवें मन्नांगे कि सागर हुंदा है। आत्मा तो विश्वास उठदा जा रहा है, नाल लगदा परमात्मा तो भी विश्वास उठदा जा रहा है। अज दी सदी दे अंदर, ज्ञान याफ्ता सदी दे अंदर। खैर, जो मैं बेनती करनी चाहुंदा सी, आत्मा करके असी चल रहे हां, बोल रहे हां, बस रहे हां, कमा रहे हां, खा रहे हां, अमीर हां, गरीब हां, आत्मा करके। गुरबाणी दा एक फैसला हुंदा है, तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया तां तन खाकू राल। तन दा अखरी अर्थ इत्थे है शरीर। आखिया जिन्ना समा तेरे शरीर दे अंदर आत्मा चल रही है, आत्मा वस रही है, साथी नाल है, उन्ना समा तू चल भी रहा है, कमा भी रहा है, गा भी रहा है, कारोबार कर रहा है, तू चंगा है, तू बुरा है, दुनिया विच तेरा वजूद कायम है। जिस दिन परमात्मा दी अंश आत्मा तेरे विच नहीं रहेगी, उस दिन तेरा शरीर राल बन जाएगा, खाक दे बराबर बन जाएगा। तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया, साथी उठ के चला गया, आत्मा उठ के चली गई, तां तन खाकू राल, ए शरीर खाक बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। उस दिन तो बाद चलना, बोलना, कमाउना, वेखना, विचरना, ये सब कुछ नहीं होएगा, आत्मा कारण है। हुण आत्मा नूं इह शरीर छड्डना पिया। आत्मा आई सी परमात्मा दे देश तो, परमात्मा तो विछड़ के, परमात्मा दे अंश से। बड़े ध्यान नाल इस नुकते नूं समझण दी कृपा करियो। आत्मा नूं परमात्मा दा देश मिलिया नहीं, शरीर छड्डना पिया, फिर वो आत्मा जाएगी कित्थे। सोहरे टोई ना लहे पेईए ना ही थाऊं, वो आत्मा जाएगी कित्थे। आत्मा दे कोल शरीर भी नहीं रहा, शरीर किसे कारण करके या एक्सीडेंट करके या बुढ़ापे तो बाद शरीर ते छड्डना पिया। अगे है परमात्मा दा घर, परमात्मा मिलिया नहीं, तो ए आत्मा फिर विचकार पटकेगे। समझण वास्ते में समझ लो, थल्ले शरीर है, उत्ते परमात्मा है। समझण वास्ते हुण परमात्मा मिलिया नहीं, शरीर छुट गया है, वो आत्मा कित्थे जाएगी। वो आत्मा पटकेगे, जिन्हों पंजाबी दे अंदर आपां कह दिंदे आ फलाने दी रूह पटक रही है, फलाने दी आत्मा पटक रही है। ते जिस रूप विच आत्मा दा पटकना असी मन रहे हां, गुरबाणी उस रूप विच नहीं मनदी। वो आत्मा कित्थे पटकदी है? फिर दोवां दे विचकार चल रहा है एक चक्कर, ते वो चक्कर चल रहा है 84 लख जूनियां दा चक्कर। ये आत्मा फिर जूना दे अंदर पटकदी है। कदी इस आत्मा नूं दूसरा शरीर मिल जांदा है कुत्ते दा, वो शरीर छुट जांदा है बिल्ली दा, वो भी शरीर छुट जांदा है फिर परिंदे दा, फिर वो भी शरीर चला जांदा है कोई कीड़ा मकौड़ा, कदी कोई उड्डन वाला, कदी जमीन दे अंदर। इस तरह अनंत जूनिया ते अनंत जूनिया दे अंदर ये आत्मा पटकदी रहिंदी है। तां ही ते गुरबाणी दे अंदर वार वार
इस तरह का जिक्र आंदा है कि हों आया दूरों चल के, गुरबाणी का बचन है ना कि हों आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरणाए जियो, मैं आसा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। दूरों चल के, ते दूरों चल के आंदा की मतलब है कि गुरुद्वारे तो किसी का घर 2 किलोमीटर दूर है ते ओ कह सकता है मैं दूरों चल के आया, जेड़ा मुड तो उठ के आया वह नहीं कह सकता। इहदा मतलब बाणी एक दे उत्ते लागू है दूसरे दे उत्ते लागू नहीं है। दूरों चल के आउण दा की अर्थ होया, मैं भटकदा भटकदा अनेक जूनिया दा चक्कर कटदा कटदा लंबे समय तो जूना दे गेड़ विच रहिंदा रहिंदा सतगुरु ऐस जून विच आया। दूरों चल के अनेक जूनिया विचों निकलन तो बाद तां मैनू ए जून मिली है, तां मनुखा जन्म मिलिया है। इहनू कहिंदे ने दूरों चल के। तो मैं इतने लंबे समय तो भटकरिया सी, तेरे तो बड़ा दूर सी, कदी पशु दा शरीर, कदी परिंदे दा शरीर, कदी नभचारी, कदी थलचारी, कदी पानी दे अंदर दा जीव भटकदा रहा। आत्मा मेरी शरीर बदलदी रही, जामे बदलदी रही, मैं भटकदा रहा। तो अज दे महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने सहुरे टोई ना लहै, रब दे घर दे अंदर तेनू सहारा नहीं मिलिया, क्योंकि उस तरह का इस जन्म के अंदर रह के तू कुछ किया नहीं है कि रब जी के दर के उत्ते बहन का योग बन जाए, उस बराबर बन जाए, योग बन जाए, उते यतन प्रयतन तू किया नहीं। रब ने एक बकायदा नियम बनाया है, सिस्टम बनाया है, उस प्रोसीजर विचों निकल के ही परमात्मा का दर मिलता है, निकलन तो बगैर दर नहीं मिलता। और इस सिस्टम ही कल्ले परमात्मा ने नहीं बनाया, तुसी भी बनाया है, इस दुनिया के अंदर भी है। अगर एक जज की सीट खाली होवे, वैकेंसी निकले भी एक जज नियुक्त किया जाना है, तुसी अपने अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो, तुसी फार्म भर सकते हो, जज की एक सीट खाली है। हुण जज की सीट वास्ते कोई रिक्वायरमेंट भी तो होगी ना कि इहदी तालीम इन्नी चाहीदी है, पढ़िया लिखिया इन्ना चाहिए, इहनू वकालत दा तजर्बा इन्ना चाहिए, कोई एप्लीकेशन भरे दूसरा ने। ते हुण जे कोई एक अनपढ़ बंदा अंगूठा छाप बंदा जाके धरना दे कि मैं दूसरे नालों उच्चा लम्मा हां, सुंदर हां, सुनखा हां, जज की सीट ते मैनू क्यों नहीं बिठाउंदे, ते जज की सीट ते बहन वास्ते बकायदा एक तालीम निर्धारित की गई, नियुक्त की गई। वो तालीम तेरे कोल होएगी तो बन जाएगा, नहीं होएगी नहीं बनेगा। बड़ी सादी जी उदाहरण, अगर उस सिस्टम विचों निकल रहा है ते तेनू कोई जज बनाउन वास्ते सोच सकता है, तू सिस्टम विचों निकलिया ही नहीं है, तालीम तेरे पास ही नहीं है, तजर्बा तेरे पास ही नहीं है, तेनू जज बनाएगा कौन। परमात्मा दे चरणा विच बहन वास्ते भी बकायदा एक नियम तैयार किया है परमात्मा ने, तेरा मन पवित्र होना चाहिए, तेरे मन के अंदर द्वैत वैत नहीं होनी चाहिए, ईर्षा निंदा चुगली आदि बुराइयां तेरे मन दे नेड़े तेड़े भी ना होन। काम क्रोध जह परसे नाहिन तेह घट ब्रह्म नवासा, काम क्रोध ते तेरे मन नू कदी छूया भी ना होवे, परसिया भी ना होवे। तो हुण अगर ते नियम साडे उते लागू हुंदे ने तां ते आत्मा परमात्मा दे देश दी वसनीक बन सकदी है, अगर ये नियम मेरे उत्ते लागू नहीं होंदे ते फिर आत्मा वसनीक नहीं बनेगी, फिर आत्मा भटकदी रहेगी, जूना दे अंदर भटकदी रहेगी। तो अज दे इस महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी कहन लगे सहुरे टोई ना लहै। एक बेनती मैं इत्थे होर करदा चला, आखिर सहुरे घर नूं की दिक्कत है, परमात्मा नूं की दिक्कत है, वह साडी आत्मा नूं अपने घर दे अंदर जगह देंदा क्यों नहीं, परेशानी इहदे विच की है, दिक्कत कित्थे है। एक नियम है कि साडा संबंध जिउंदे शरीरां नाल, परमात्मा दा संबंध जिउंदियां रूहां ते जिउंदियां आत्मावां दे नाल है। किसी दा कोई परम मित्र होवे या कोई मां बाप होवे या कोई भैण भाई होवे जां कोई पति पत्नी होवे और बड़ा नेड़े दा रिश्ता भी ते दिल दी सांझ रखण वाला मित्र भी, उस शरीर करके चला जाए, चलाना कर जाए, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਰਗਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ,
अपने गार्डन दे अंदर इहदा संस्कार क्यों नहीं कर देंदे? अपने घर दे पिछले पासे खाली जगह पई उत्थे इहनूं क्यों नहीं दफना देंदे खड्डा कढ के? असी एक ही जवाब देंगे, घर जिउंदिआं वास्ते हुंदा है, घर मुरदिआं वास्ते नहीं है। मुरदिआं वास्ते बकायदा शमशान भूमिया बन गई, मरगट बन गए जिउंदे शरीरां वास्ते घर, मुरदिआं वास्ते मरगट, मुरदिआं वास्ते मड़ियां, मुरदिआं वास्ते शमशान भूमि। साडा संबंध जिउंदे शरीरां नाल है। असीं जे चाहुंदे आ कि साडा घर मुरद घाट ना बने, साडा घर शमशान भूमि दे बराबर ना बने, तो परमात्मा भी चाहुंदा है मेरा घर मुरद घाट ना बने। असीं जिउंदे शरीरां नूं तरजीह देने आ, परमात्मा जिउंदियां आत्मावां नूं तरजीह देंदा है, जिउंदियां रूहां नूं तरजीह देंदा है। असीं अक्सर एक बोल बोल देने आ ना कि फलाणे दी जमीर मर गई है। मरी जमीर वाले नूं परमात्मा अपने घर दे अंदर पना क्यों देवे? उन्हें अपने घर नूं कोई शमशान घर बनाउणा है? जे तुसीं राजी नहीं कि अपने घर नूं शमशान घर ना बनाईए, तो परमात्मा भी राजी नहीं। वह कहिंदा मैं भी शमशान घर नहीं बनाउणा, मेरे कोल भी आ ते पूरा पवित्र होके आ, पूरा अपनी जमीर नूं जिंदा रख के आ, अगर मेरे कोल आउणा है। तो जो आत्मा मुर्दी हुंदी है, आत्मिक तौर ते जो मरिया हुंदा है, अपनी जमीर दी आवाज नूं जो नहीं सुनदा, वो फिर वार वार जूना दे अंदर ही भटकदा है, होर जाए किथे? उहनूं शरीर बदलने पैंदे ने, जूना बदलनियां पैंदियां। तो फरीद साहब इशारतन हुक्म कर रहे ने, कहन लगे ना ते सहुरे घर दे अंदर टोई मिली रब जी दे घर दे अंदर, ना पेके घर दे अंदर ही रहन वास्ते थां मिलिया। शरीर बुढ़ा होया, शरीर नूं मौत आई, किसे नूं कहिए तेरा बड़ा प्रेमी सी इहनूं घर दे अंदर रख छड, कौन रखेगा? मुर्दे नूं की करोगे रख के? रखना भी चाहोगे किस काम आएगा? पेईए नाही थाओ, ते फिर जिस परिवार वास्ते, कुटुंब कबीले वास्ते मनुख अपनी जमीर नूं मुर्दिआं करदा है। मेरा मतलब यह नहीं है कि परिवार नूं छड देना है, परिवार की लालना पालना नहीं करनी। गुरु नानक साहब ने सिखाया रहना संसार विच, रहना परिवार विच, ते जे तेरे उते दो चार पंज बच्चियां दी कोई परमात्मा वल्लों जुम्मेवारी आई है, ते फिर उस जुम्मेवारी नूं भी तूं निभाउणा है, ते निभाउणा भी चंगे तरीके दे नाल है। परमात्मा वल्लों मिली सेवा समझ के जुम्मेवारी नूं करना भी है, निभाउणा भी है। तो अर्ज मैं कर रहा सां, रब जी ने ते नहीं कहा कि परिवार पालदा पालदा आत्मिक मौत ही कबूल कर, परिवार पालदा पालदा जिहनी जमीरी तौर दे उत्ते मुर्दा बन जा। तो बेनती मैं ये कर रहा सा कि परमात्मा दे देश केवल जिउंदियां आत्मावां जिउंदियां रूहां नूं जगह है, मुर्दियां रूहां नूं नहीं। मुर्दियां रूहां नूं शरीरां दे अंदर भटकना ही पैंदा है। जिन्हां वास्ते असीं अपनी रूह नूं मुर्दा कीता है, अगर उन्हां नूं परिवार वालियां नूं मर जाण तों बाद मुर्दे दा सुपना भी आ जाए ना, सुपना, ते परिवार वाले फिर पंडतां पांध्यां दे कोल, पखंडियां दे कोल चलदे ने, जाके कहिंदे ने जी साडे घर दा फलाणा फलाणा मैंबर मर गया सी, ते अज साडे सुपने दे अंदर आया। परिवार दा ते इन्ना के साडे नाल, मोह इन्ना के साडे नाल। जिउंदे जी अगर जवान पति घर विच नहीं आया, कुदरती लेट होया है, ते पत्नी नूं इस गल दा फिक्र बनदा है भी समा काफी हो चुका है, आया क्यों नहीं? जवान भैन भी फिक्रमंद हुंदी है भाई आया क्यों नहीं, मां भी फिक्र विच रहिंदी है पुत्तर आया क्यों नहीं, पिता भी फिक्र करदा है कि धी नहीं आई, पुत्तर नहीं आया, आखिर कारण की है? जिउंदे जी जो इंतजार करदे रहिंदे ने कि लेट होया है आया क्यों नहीं, मरण तो बाद वो इंतजाम कराउंदे ने कि इहदा हुण सुपना भी ना आवे, इहदी याद भी ना आवे। और ये हकीकत है, मैं कोई अत कथनी तुहाडे सामने बयान नहीं कर रहा। फिर अपने घर दे सामने धागे बनवाउंदे ने, उपाय यतन कराउंदे ने, पखंडियां दे कोलों, पंडतां दे कोलों, इहदा सुपना भी नहीं आउणा चाहीदा, इह साडे ख्यालां विच भी ना आवे। इतनी असलियत समाज दी खोल के गुरबाणी साडे सामने रख रही है, सानू ना समझ आवे ते साडी अपनी कमी है, गुरबाणी दा दोष इहदे विच नहीं है। तो खैर, कह रहे ने भगत फरीद साहब जी, सहुरे टोई ना लहे पेईए नाही थाओ, पिर वातड़ी ना पुछे। पिर मैंने पति, वातड़ी मैंने वात लैनी, खबर लैनी। पति परमात्मा तेरी वात पुछदा नहीं,
तन तन मैंने जीव स्त्री सुहागण लाओ। हे जीव स्त्री तू अपने आप नू ना दे रख के मैं सुहागण आ। पति दे नाल तेरा मेल जोल नहीं, पति दे नाल प्यार नहीं, पति दे नाल बहना उठना नहीं, पति दे नाल बोल बाणी नहीं, पति दी चार दवारी विच नहीं, पति दी मान मर्यादा विच नहीं। ते फरीद साहब कहन लगे गल्लां दे नाल सुहागण बनी रह, कौन रोक सकदा है तेनू के तू अपने आप नू सुहागण ना कह। पर सुहागण होना गुणा दा नां है, केवल लिबास दा नां सुहागण नहीं है।

कॉमन, कॉमन मैंने जीव स्त्री, कॉमन तो शिंगार कर जो पहला कंत मनाए। कहन लगे पहला कंत नू मना, कंत मैंने पति, पहला कंत नू मना, कंत तेरे नाल सुला सफाई कर लवे, कंत तेरे उते रीज पवे, तेरा शिंगार कीता तां सफला है। अगर कंत दे नाल तेरी मुलाकात नहीं, कंत दे नाल बोल बाणी नहीं, कंत दी गल नू प्रवानगी नहीं, ते शिंगार लबास लख बना के रख, की अर्थ है उस शिंगार दा। मैं एक वचन गुरबाणी विचों ताप संगतां दे सन्मुख होर रखदा चला। पाशा कहिंदे ने सखी काजल हार तंबोल सबै किश साजिया। काजल तेरिया नेत्रां दे अंदर कालक होवे, सुरमा होवे। काजल हार तेरे गले दे अंदर सोने दा हीरे दा जड़िया होया हार भी पाया होवे। सखी काजल हार तंबोल, खिमा चाहवांगा बोल कुछ इस तरह दे ने पर खुलने पैणगे। तंबोल कहिंदे ने फुल्लां नूं रंग देण वाला पदार्थ, जिन्हों अज नान लिपस्टिक दा मिलिया। पुराने समय विच दातन कीती जांदी सी रंग वाली, अज उहदी जगह दे उत्ते आ गई लिपस्टिक। आखिया सखी काजल हार तंबोल, बुल्लां नूं रंगिया भी होवे, गले विच हार भी होवे, अखां विच काजल भी होवे। काजल हार तंबोल सबै के साजिया, सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया। गुरबाणी दे बचन ने सोलह शिंगार तू कर लवे। शिंगार औरत दे सोलह ही मन्ने गए ने, सोलह ही गिने गए ने। ते पातशाह कहन लगे सोलह दे सोलह शिंगार इन्हे सुहागण ने किते होन, अंजन सजाया होवे, सुरमा पाया होवे। सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया, जे कर आवे कंत ता सब किस पाईए। हर हां कंत बाज शिंगार सब बिरथा जाई है। जे कर आवे कंत, जे ते कंत तेरा घर विच आ रहा है, कंत दे नाल तालमेल है, कंत मैंने पति, ता सब किस पाईए, ता ते तेरे कीते शिंगार दी कोई कीमत है। शिंगार हुंदा है पति नू रिजाउन ले, शिंगार हुंदा है पति दी खुशी ले। हर हां कंत बाज शिंगार सब बिरथा जाई है। उस सारे तार्मिक कर्म, तार्मिक अडंबर अजाई चले जांदे ने, बिरथा चले जांदे ने, जे पति परमात्मा मन दे दरवाजे नू खड़का के मन दी छेजा ते बैंदा ही नहीं है। जे परमात्मा दी याद ही अंदर नहीं, तो सब कीते हुए तार्मिक शिंगार लबास पहरावा सब कुछ अजाई चला जांदा है, व्यर्थ चला जांदा है, कोई कीमत नहीं, अगर पति परमात्मा मन दी छेजा उते नहीं है। तो पहला पति दे नाल सुला करो, पति दे नाल सुला करन वास्ते, पति दे नाल सांझ बनाउन वास्ते, पति दे अनुसार अपने आप नूं चलाउन दी जात सिखो, पति दी गल नूं मनना सिखो। पति ये गल कहे कि ये काम करना है ते बस हथ जुड़े रहन, जी हजूरी विच हां जी करना है। पति कहे कि काम नहीं करना ते कोई अपील दलील उक्ती युक्ति ना होवे कि क्यों नहीं करना, बस पति दा हुक्म है नहीं करना ते नहीं करना। मैं अक्सर एक बेनती करया करदा कि अज विज्ञान ए गल सिद्ध कर दी है कि केसां दे अंदर ऑक्सीजन है, केसां दे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, केसां दे अंदर कार्बन है, इस तरह तरह तरह दीयां गल्लां विज्ञान सिद्ध कर दी है। पर मैं गल कहना है मत कहो कि केस रखने तां जरूरी ने कि इन्हां दे अंदर ऑक्सीजन हुंदी है, केस रखने तां जरूरी ने इन्हां दे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हुंदी है, ये मत कहो। कल नूं कोई दूसरा विज्ञानी उठे वो ये सिद्ध कर दवे कि केसां विच ये नहीं हुंदा, क्योंकि विज्ञान दीयां दलीलां आए दिन बदल जांदियां ने। पिछले विज्ञानी दी दलील नूं अगला विज्ञानी काट करदा होया नजर पैंदा है, कटदा नजर पैंदा है। कदी रूस वालियां ने ऐलान कीता सी धरतियां आकाश केवल 14 ने, इस तों वध नहीं है। अमेरिका वालियां ने उन्हां दी दलील दा खंडन कीता, कहन लगे नहीं 21 धरतियां ते 21 आकाश ने, इस तों वध नहीं। डॉक्टर करतार सिंह सोलन दे रहण वाले उन्होंने अमेरिका दी दलील नूं वी कट दिता। उन्होंने किताब लिखी है गुरमत वख्यान, लिखण वाले राइटर दा नां है डॉक्टर करतार सिंह सोलन, सोलन शहर दे रहण वाले ने और महान साइंटिस्ट होए ने। किताब आप लेके पढ़ सकते हो, मैं तां राइटर ते किताब दोवां दा नाम तुहाडे सामने अर्ज कर दिता है। उहदे विच ओह लिख रहे ने कि 10 करोड़ अंक